0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून 2026 सुबह के 5:53 मिनट 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं आपका काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं।

0: अलीगंज पुलिस ने बीएनएस और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एसआईटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल है। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक

0: शॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embrace the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर

0: Good morning. This is Akashvani. I'm Sunil Verma with the world's news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. Iran denies US Vice President J.D. Vance's claim that Tehran will allow nuclear inspectors back into the country. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है.
0: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है. स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया. देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं.
0: Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
1: 25 crore लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता, बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं. यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है.
0: Four

0: Hoy listeners, gana lo lumba se lo kata kata kina next caller kuna si kuni kina so. Hello, good morning.
1: Good morning sir, namaskar.
0: Namaskar, kon bol rahi hai?
1: Sir, main Durgesh Nagapur bol raha hu.
0: Arey Durgesh ji, kaise ho?
1: Kaise sir, details se kaadikam sun gaya apka.
0: Aur chai nashta ho gaya?
1: Chai nashta bhi ho gaya, khana bhi ho gaya.
0: Khana bhi ho gaya? और आज का क्या प्लान है
1: सर? अभी बैठ के आपके कार्यक्रम सुन रहे हैं।
0: अच्छा, और आज का भी गर्मी ज्यादा?
1: हाँ, गर्मी का है सर मौसम।
0: अच्छा, तो आज क्या क्या गीत गाएंगे?
1: आज फिल्म खिलाड़ी का वादा रहा सनम।
0: खिलाड़ी अच्छा, वादा रहा सनम। अभिजीत और अलका यकनी की आवाज में।
1: जी सर।
0: और ये मूवी देख लिया आपने?
1: मूवी तो कम

0: 가네 여자친구.
1: 아 진짜 또 연락이 갔지 네 잘. 아
0: 잘했다.
1: 토라 액도 라인.
0: 와다다 하스만 오게 주다남. 여러분 이따 이야기.
1: 거의 반네 बहुत बढ़िया दुर्गे जी
0: जी सर
1: और ये डेडिकेशन करना चाहूंगी
0: सर ये मेरे फैमिली के लिए और सभी लिसनर्स और आगे के लिए सर
1: ओके तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद
0: जी सर
1: और दुर्गे जी ऐसे ही सुनते रहिए
0: जी सर
1: एंड हैव अ नाइस डे
0: जी सर धन्यवाद
1: ओके बाय बाय Alright, this is that was Mukhalaga Durkesh Nagampuri. Alright, I was Piman Bal, Ganavi Man Bal Kuridishi. Alright, Ganavi Man Bal request Kuridishi. Vada Raha Sanam from the movie Kilari. Alright, Ganagusha Bijit or Alka Yaknik music. Dishi Jatin Lalit. Lyrics Dishi Anwar Sarkar.

0: Hello?
1: किंग सर नमस्ते।
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील मालपुर जिला उज्जैन से।
0: अच्छा प्रेम जी।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: के हम बहुत बढ़िया है, आप कैसे हो बताओ?
1: मैं भी अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: हम भी ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहे हैं। और
1: जी हल्की हल्की बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे।
0: और बारिश हो रही है उधर पे?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, तो मौसम बहुत अच्छी होगी ना?
1: हाँ जी बिल्कुल अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छा, तो आज का क्या प्लान है? घर में बैठ के पूरा दिन ऐसे ही? और
1: हाँ, बस कार्यक्रम सुन लेंगे और मोबाइल से बात करेंगे आपसे। फिलहाल तो यही प्लान है हमारा।
0: अच्छा, कोई बात नहीं। और लंच किया कि नहीं?
1: जी अभी तो नहीं किया।
0: अच्छा, थोड़ी बात में।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो आज क्या सुनने चाहूंगे आप?
1: किम का नाम है गुरु।
0: अच्छा, आज का गुरु?
1: हाँ गुरु अक्षय कुमार, वो है ना अभिषेक बच्चन वाली।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, गाना का?
1: गाने का वाले बरसो रे मेघा मेघा।
0: बरसो में
1: देखा, बताना पड़ेगा।
0: नहीं नहीं, मेरा पास है तेरा बिना, माया मरियम, जागी हैं, एक लोक। ओके ओके, आप बताओ दूसरा गाना का नाम।
1: दूसरी फिल्म बताऊं ना आपको?
0: फर्स्ट वाला क्या गीत था?
1: ये सुना दीजिए, क्रिस्ट फिल्म का।
0: नहीं नहीं, फर्स्ट गीत का क्या बोल था?
1: बरसो रे मेघा मेघा।
0: ओके, अच्छा वो गीत शायद नहीं है। अच्छा, किसने गाया है आर्टिस्ट?
1: ये श्रेया घोषाल।
0: श्रेया घोषाल,
1: हाँ वो श्रेया घोषाल ने गाया है, इसे आई पे फिल्माया गया है।
0: अच्छा, फिल्म का नाम क्या है?
1: गुरु।
0: अच्छा गुरु, शायद ये मेरा पुराना वाला होगा।
1: नहीं, नई फिल्म है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की।
0: अच्छा अच्छा, हमारे पास से गीत का बोल बोलेंगे, बाजी लगा।
1: हाँ?
0: एक लो एक मुफ्त जागी।
1: गुरु फिल्म का बता रहे हैं?
0: हाँ हाँ हाँ
1: जी सर, इसमें तो ये गाना फिर आपको वो बताइए।
0: मेरे पास सिर्फ चार है, माया मरियम और तेरा बिना।
1: अच्छा, ये वाला नहीं है तो फिर
0: कोई बात नहीं, दूसरा फिल्म बोलिए।
1: दूसरा बताओ, क्रिश फिल्म।
0: अच्छा क्रिश तो होगी।
1: हाँ
0: अच्छा, क्रिश क्रिश क्रिश क्रिश
1: क्रिश मैंने आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
0: आओ सुनाओ। डेडिकेशन से?
1: हाँ जी, भगवान श्री परमा लोकेंद्र मा अस्तो सजना संगीता जी, कानपुर से पूनम जी।
0: अच्छा,
1: आपके लिए रहेगा।
0: अच्छा बहुत थैंक यू। तो सिर्फ ये?
1: हाँ जी।
0: अच्छा तो सर,
1: बहुत सारे दोस्त है, बट आपको असम से है,

0: Hoy listeners, mooy laas caller loole mun ido wane kanaw lop khata kadi che. Hello.
1: Hello sir, namaskar.
0: Namaskar, kon bol rahi hai?
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम माया तहसील रहती जिला सीहोर एमपी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा रमेश, कैसे हो?
1: बस स्वस्थ है, मस्त है। और गाना आपका प्रोग्राम सुन रहा था, बढ़िया, आप अच्छे प्रोग्राम जा रहे हैं, मस्त चल रहा था।
0: वाह, सुन
1: तो क्या? मैं भी लगा के देखता हूँ तो लगाया
0: और लग गया
1: लग भी गया
0: तो अच्छा बताओ, आप लास्ट कॉलर होगी तो आज क्या गीत बजा दूंगी आपके लिए?
1: दुश्मन फिल्म का है क्या?
0: दुश्मन हम जी देखने पड़ेंगे। अच्छा गाना का
1: तुमने देखा? मैंने देखा, सबने देखा, क्या देखा? तो दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है,
0: वो गाना का नाम है क्या?
1: हाँ गाने का नाम है।
0: ये 1998 का मूवी है क्या
1: जी?
0: गाना का नाम क्या है?
1: देखा मैंने देखा सबने देखा क्या देखा, एक दुश्मन दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है, ये सब बोलो। स्टार्टिंग में है तुमने देखा मैंने देखा,
0: वो गीत शायद नहीं है मेरे पास, मेरे पास से आवाज हो हमको और प्यार क्या कोई सूरत और प्यार को हो जाने दो,
1: बस दो नहीं है।
0: हाँ
1: तो फिर दूसरे देख लो, सुहाग फिल्म है क्या?
0: सुहाग, सुहाग में सिर्फ एक गाना है, ए यार सुन।
1: ए यार सुन,
0: हाँ
1: तो बोल सुना।
0: अच्छा तो डेडिकेशन होगी
1: जी सबसे पहले तो आपको।
0: ओके बहुत थैंक यू
1: जी। और पूरन वर्मा जी है, गजराज मोदी जी है, कैसे सिंह राजपूत है, महिला चंदू ने प्रेम सिंह सिसोदिया है, लोकेंद्र वर्मा जी है, उज्जैन से धर्मवीर है, दिल्ली से आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूर्णिमा जी है विजयपुरम से, शिवलू आर है विदिशा से, और राकेश जी है शिमला से, बिमल है असम से, अमल है भस्माकारी, अमन भस्माकारी है, तो गोल्डी जी है, अमर सिंह साहू है, भाई को मुंडा है, रमेश छात्र है, और रिक्कु बिल्ले मिथ्था।
0: अच्छा
1: ये नाम मेरे को सही नहीं आता, रिक्कु बिल्ले मिथ्था
0: रोको विले रोको है रोको रोको विले
1: अच्छा रोको विले
0: हाँ मैं था। हाँ
1: जी जी।
0: अच्छा तो सुनकर सुनकर एंजॉय करिए ये गाना
1: जी,
0: एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: धन्यवाद।
0: ओके बाय बाय। Yes listeners, it will last get to you up there and can you? Kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone, kung kung phone,

हाँ जी, गाना का था लवेरिया हो गया। यस, अपनी अनहुनिया से हिंदी फिल्म का प्रोग्राम और ये गाना तो एकदम भाल रही है। एंड यस, अपनी यहाँ लिसनर्स को मतलब बीमार होना था कि ऊपर है कि मैंने पानी गिरे था सीजन से, तो ये तो पानी तो अपने यहाँ माथा दे लगी चुके, नहीं तो अपने यहाँ पानी बिजी ना बिराई चुके, तो सूटी खांसी लगी हुई ऐसे, और मलेरिया तो न लगी भी, सूटी खांसी लगी हुई मलेरिया खान तो न लगी हुई लगी चुके एकदम, यू नो बिजी बिया हुआ और चेकअप जब भी गोड़े बुही ना बीमार हो जाए तो जुली बाली जब भी कुंकु नीतिया बीमार से, तो यस ये तो कौन सी मैसेज पे आई ना से वेरी गुड आफ्टरनून आर जी, वेरी नाइस सॉन्ग्स बाय द वे लिसनिंग फ्रॉम कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट को ऐसे सुनील पंचो फ्रॉम कपरा लांगसो। वेल सुनील पंचो हुनी ना एकदम एंजॉय करी थी भी और एकदम अपनी ना ब्यूटीफुल मैसेज पूरी ना मुझे एकदम खुशी बसे इनका निश्चित अपनी का मैसेज करो ले मुझे शिले करी थी भी मैसेज से 9436805333 और दो शो एक बजे तक से तो धूमधाम गाना बजाई थी वो। दुर्गेश जी भी मैसेज लिखी ना बताई दीछे। वेल दुर्गेश जी एकदम भाल गाना गीत करे, एकदम भाल गाना करे ताजी गाना करी ना खुनाई दीछे।

0: को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड के कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होविट्ज़र तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: और ये है आकाशवाणी रेनबो। रेनबो पर इस वक्त रेनबो हेल्पलाइन का शो शुरू हो चुका है। आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी और रेनबो हेल्पलाइन में जैसा आप जानते हैं हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ती हैं, हमारे साथ जुड़ती हैं या जुड़ते हैं और एक टॉपिक होता है जिस पर हम बात करते हैं, अपनी गेस्ट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालवाते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप भी अपने सवाल पूछते हैं, हमसे जुड़ते हैं फोन के जरिए या मैसेजेस के जरिए। तो आप सब तैयार हैं ना? आज किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव करियर्स इन द डिजिटल एज, मीडिया, फिल्म एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी हैं वो हैं प्रोफेसर रितु संजीव सूद, जो कि डीन है शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट में और फिलहाल हमारे साथ हैं। उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। तो आकाशवाणी रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर रितु जी।
2: थैंक यू बबीता।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी सारी ऑडियंस मेरे को मिल गई है एट ए टाइम बात करने के लिए।
1: हाँ।
2: एक मीडिया पर्सन को और क्या चाहिए।
1: और इस मीडिया से ना सब अट्रैक्ट होते हैं और लगता है कि इसमें ही जाना चाहिए। शुरुआत में जब हम रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं या आजकल तो मोबाइल सब बच्चे बच्चे के हाथ में होता है, तो जो करियर पहला चुनता है ना कोई बच्चा, वो इसी से रिलेटेड। और ज्यादातर तो बच्चे आजकल, लड़कों की बात करें तो वो गेमर बनना चाहते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि इसके लिए बच्चों को फोन दें, उनको कहें कि पढ़ाई करो या फिर इसके आगे की पढ़ाई भी जरूरी है, इस बेसिक पढ़ाई के बाद, स्कूल की पढ़ाई के बाद, और फिर किस तरह की पढ़ाई करें, क्या गेमर बनना भी ठीक है क्या आज की डेट में। ऐसे तमाम सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं माँ बाप के खास तौर पर, और बच्चों के तो हैं, बच्चे तो क्लियर हैं कि उनको ये बनना है। अब वो किस आगे की तो सोच नहीं पाते क्योंकि अभी वो छोटे हैं, तो माँ बाप को ही सोचना होगा कि उनको किस तरह की पढ़ाई दें, उनको किस तरह की सीख दें, कितना मोबाइल देना है और कितना उसको उनको मोटिवेट करना है मीडिया में आने के लिए या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए या क्रिएटिव डिजिटल एज में आने के लिए। तो ये इतने सारे सवाल तो एज अ पेरेंट मेरे ही हो गए हैं और आप सबके सवाल भी बहुत सारे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने सवाल लिख कर भेजें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या फ़ोन मिलाएं और हमसे बात करें। फ़ोन मिलाने के लिए 2342-1080 या 2342-1084 इन नंबर्स पर कॉल करिए। और दिल्ली के बाहर से अगर आप कर रहे हैं दिल्ली NCR के, तो 011 इन फ़ोन नंबर से पहले लगा लीजिए। एक बार फिर से सुन लिए 2342-1080 या 2342-1084। आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9868107070 ये है हमारा नंबर व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए, 9868107070। तो आज हम बात करेंगे क्रिएटिव करियर्स इन द डिजिटल एज, मीडिया, फिल्म एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। हमारे साथ गेस्ट हैं प्रोफेसर रितु संजीव सूद, जो कि डीन है शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट में। फटाफट अपने सवालों के साथ जुड़ जाइए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
4: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
3: हाँ सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
4: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
3: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
7: पता का चाय, गजब का स्वाद।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: और आकाशवाणी रेनबो पर चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी। और आज बात कर रहे हैं क्रिएटिव करियर्स इन द डिजिटल एज। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है एज अ पेरेंट, और उन बच्चों के लिए भी जो डिजिटल एज में कुछ डिजिटली करना चाहते हैं, करियर इस तरह का कुछ बनाना चाहते हैं, मीडिया में, फिल्म में या OTT प्लेटफॉर्म पर। अभी तो बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं और इस टॉपिक पर मैं तो क्या ही बताऊंगी। हमारे साथ हैं गेस्ट प्रोफेसर रितु संजीव सूद, जो कि डीन है शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट में वो आई हैं और वो बहुत कुछ बताने वाली हैं। आप अपने सवालों के साथ कब जुड़ेंगे, फ़ोन करिए ना 2342-1080 या 2342-1084 पर, या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल पूछ डालिए 9868107070 पर। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। फिलहाल तो मुझे रितु जी से समझना है कि ये डिजिटल एज क्या है और क्या ऑप्शंस बढ़ गए हैं इस वक्त।
10: बिल्कुल बबीता जी, डिजिटल एज यानी कि टेक्नोलॉजी। आजकल जितना भी कुछ है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारा डिजिटल ट्रांसमिशन हो रहा है। मोबाइल फोन्स हैं हमारे पास, तो हर चीज हमारी आसान है और चुटकी में हो जाती है। कुछ रिसर्च करनी है, कुछ करना है, अगर आप शूट कर रहे हो उसको इमिजिएटली अपलोड कर दोगे, तो हर चीज जो है वो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। और अब वो जमाना खत्म हो गया कि हाँ जी हम खाली दिल्ली में प्रसारित हो रहे हैं या फिर हम जयपुर के लिए ही खाली हैं। अब एक बार आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए, आपका ग्लोबल ऑडियंस है।
9: ओके,
10: सो ये है कि पढ़ाई हो, काम हो, या बिजनेस हो, या एंटरटेनमेंट हो, हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है आज। इसी वजह से आज के समय को डिजिटल एज कहा जाता है। और दूसरा सवाल आपका था कि कैरियर
9: ऑप्शंस क्या बढ़ गए हैं करियर के लिए।
10: बिल्कुल बिल्कुल बढ़ गए हैं, क्योंकि आप ये देखिए, आज से 10 साल पहले जो हमारे कैरियर ऑप्शंस थे वो क्या थे, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर मीडिया में तो बहुत ही कम लोग आते थे।
9: हाँ, और मीडिया के लिए हमें सिर्फ यही पता था, न्यूज रीडर बन जा सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, या फिर कंटेंट लिखना आता है तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। बट इसके अलावा बहुत सारी चीजें बढ़ गई है, तो क्या आपको लगता है कि अभी करियर के ऑप्शन मीडिया में बहुत ज्यादा है?
10: बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप ये देखेंगे तो मीडिया तो हर जगह पे है। आप चाहे हॉस्पिटल्स में देख लें, वहां पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं, ब्रांडिंग है। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, रियल एस्टेट में देख लें, तो मीडिया जो सीमित है वो एक टेलीविजन और एक क्या कहते हैं रेडियो से नहीं सीमित है, मीडिया हर जगह है, आपके हाथ में है मीडिया। हाँ। आपको जब चाहिए आप देख सकते हैं, आपको जब चाहिए उसको बंद कर सकते हैं, यू हैव अ चॉइस। और सिमिलरली कैरियर ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि अब वो नहीं है कि एक न्यूज रीडर जो है वो आएगा, न्यूज किसी और ने लिखी होगी, आएगा पढ़ेगा और वो चला जाएगा। ही वॉज जस्ट अ न्यूज रीडर, ही वॉज अ रीडर। बट अब जो है जो जर्नलिस्ट होता है वो एक जर्नलिस्ट होता है जो कि न्यूज होता है और वो पूरी रिसर्च करके आता है, एंड इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, सो यू हैव टू बी, आपको बहुत बहुत थरो अपनी नॉलेज के साथ होना चाहिए। आप सीधा मतलब मेकअप करके न्यूज रूम में नहीं आ सकते, आपको एक जर्नलिस्ट होना चाहिए और उसके लिए एक संस्था से आपको जुड़ के आपको वहां से पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज अब हर कोई नहीं मीडिया में आ सकता।
9: लेकिन जैसा अभी लग रहा है कि सभी कोई आ सकते हैं, क्योंकि बच्चा भी आज बात करता है कि पैदा होते ही उसको अगर मोबाइल दिखता है उसको गेमिंग वगैरह दो चार चीजें देख लेता है, वो सिर्फ यही बातें करता है कि कितने उसके फॉलोअर्स हैं, उसको कितना कमाई आ रही है, वो उनको पता होती है, मतलब जो गेमर्स हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा होता है तो डिजिटली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उसको दिखने लग जाते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का यूज करके वो क्या कुछ कर सकता है, और फिर उनको ये नहीं लगता कि इसके लिए कुछ एजुकेशन की भी जरूरत होती है। तो मुझे यही पूछना था कि जरूरी है एजुकेशन या बिना एजुकेशन के भी इस फील्ड में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं?
10: देखो, ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि एजुकेशन जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपका ये जो YouTube है या कुछ है ये एक शॉर्ट टर्म प्रोफेशन है। आपको इसमें अगर अर्निंग करनी है या कुछ करना है आपको टेक्निकली क्वालिफाई होना पड़ेगा, बिकॉज इसमें चाहे आपके पास मोबाइल आपके हाथ में है पर मोबाइल का कैमरा कैसे आप यूज करेंगे, आपका कॉम्पोजिशन कैसा है, आपको साउंड कैसा करना है, आपने माइक्रोफोन लगा लिया कर लिया, इट्स नॉट, वो ठीक नहीं है, बिकॉज आपको अगर प्रोफेशनल मीडियम में जाना है और आपको ग्लोबली अपने आप को रिकग्नाइज करना है तो आपको एक टेक्निकल आपको ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फिर आप में और एक पांचवी क्लास के बच्चे में क्या फर्क हुआ। आपको एक प्रोफेशनल बनना है, बहुत अच्छा है आपके आज की डेट में फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स को आपको रखना भी पड़ता है, आपको डबल वो करना पड़ता है। तो नॉर्मली आजकल जो ट्रेंड है वो देखा जा रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं दे हायर अ टीम, वो टीम को करते, टीम उनको कंटेंट देती है, टीम उनका करती है। आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे वो खुद डायरेक्ट वगैरह नहीं करते, उनके पास एक पूरी सोशल मीडिया टीम होती है जो कि उनको हेल्प करती है। इट्स अ वेरी बिग प्रोफेशन, और ये गलत फहमी है कि मैं जो
9: कैमरा उठाया हम सक्सेसफुल करियर बना सकते
10: हैं। नहीं,
9: ये शॉर्ट भी बातें छोटी छोटी करें हम घरेलू, या कुछ बहुत सारे लोग मोटिवेशनल कोट्स बोलना शुरू कर देते हैं या कुछ कुछ भी करने, तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है?
10: नहीं, बिकॉज आजकल ऑडियंस बहुत कुछ मांगते हैं। पहले क्या था कि ठीक है मैं उठी, मैंने अपना रिकॉर्ड करा और मैंने जो है प्रवचन देने शुरू कर दिए, अपने वो करा, बट नहीं, आज की डेट में ऑडियंस चाहते हैं इंट्रैक्शन, दे वॉन्ट प्रॉपर म्यूजिक होना चाहिए, प्रॉपर ग्राफिक्स होने चाहिए, उनको वो एक इंटरैक्टिव चाहिए, उनको वो चाहिए। सी, रिमोट तो मेरे हाथ में है ना, और मैं आगे पीछे कर सकती हूँ, तो अगर आपका कंटेंट अट्रैक्टिव नहीं होगा आपको ऑडियंस कहीं और चला जाएगा।
9: बिल्कुल, और इसमें सिर्फ यही नहीं है जो हमें सामने दिखता है, जो मीडिया में हमें सामने दिखता है उसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है, और उस टीम में आपको शामिल होना है तो आपको कहीं ना कहीं से एजुकेशन, कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग जरूर लेनी पड़ेगी। तो किस तरह की एजुकेशन जरूरी है और क्या एज होनी चाहिए, ये सब थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे प्लीज।
10: देखिए, आपको एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ कि क्योंकि मैं शारदा यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट में हूँ, तो हमारे पास ना पेरेंट्स आते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि पेरेंट्स तो चाहते हैं कि बच्चा या डॉक्टर या इंजीनियर बने, क्योंकि हमारी एज ग्रुप है। बट जो ये जनरेशन है ये अपने आप खुद डिसाइड करती है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर जो है वो एक ट्रेडिशनल है ना, मैं ये नहीं कह रही कि वो है, बट पेरेंट्स का ड्रीम होता है बेटा डॉक्टर बने इंजीनियर बने। अब पेरेंट्स आते हैं, हमने इसके लिए इतना कोचिंग का पैसा खर्च करा और ये देखो ये मीडिया पे जा रहा है, सो दे थिंक कि मीडिया एक बहुत ही
9: टेम्पररी है, कुछ
10: टेम्पररी एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रोफेशन। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आपको ये क्यों लगता है, आप सिनेमा देखते हो, आप रेडियो देख रहे हो, आप रील देख रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो, पूरा दिन आप फोन पे लगे हुए हो, तो मीडिया गलत कैसे हो सकता है? कल को आपका बेटा ये बनाएगा या बेटी आपकी ये बनाएगी, तो आप वो आपको प्राउड नहीं होगा कि देखिए मेरा ये बेटा ग्लोबल इन्फ्लुएंसर है, ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग, ग्लोबल डायरेक्टर है, ग्लोबल एक्टर है. तो आप बताइए कि ऐसा आपको होना चाहिए, तो उसके लिए क्या

0: है, देन आपको ये सीखना ही चाहिए कि आपके ऊपर कैमरा की लाइट कैसे आ रही है, आपको जो है टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना आता है नहीं आता, आपकी जो टीम है वो क्या रिसर्च करके आपको दे रही है, क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन हो उस चैनल के, आप ग्लोबली करेक्ट होने चाहिए, नहीं तो चैनल पे पूरा वो आ जाएगा। एंड मीडिया एक इतनी छोटी सी क्या कहते हैं दुनिया है कि एक बार आप गलत चले गए तो आपकी रेपुटेशन चली जाती है, तो इसके लिए आपको टेक्निकली क्वालिफाई जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए जो हम मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है बच्चा 12वीं का 55% मिनिमम, बिकॉज एक क्रेडेंशियल होना चाहिए। और फिर जब बच्चा यहाँ पे आता है तो वी आर ऑफरिंग एट अ ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारे कोर्सेज हैं मीडिया के, जैसे BA JMC हो गया, दैट इज़ बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिर हो गया BA इन फिल्म टेलीविजन एंड OTT प्रोडक्शंस है, फिर आ जाते हैं आपका BA इन इवेंट मैनेजमेंट आ जाता है, BA इन डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो है ये सब हम सारी मीडिया स्कूल्स हैं, मीडिया यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब आपको सिखाते हैं। और इस वक्त मार्केट में मीडिया प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत है,
1: बहुत ज़्यादा है। और मैं सोच रही हूँ कि जो अभी आप कोर्सेज बता रही है ना, इनको और डिटेल में हम समझें ताकि और लोगों को क्लियर हो सके कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनके पास कितनी चॉइसेस हैं। तो चलिए ठीक है, और सवाल भी आने शुरू हो गए हैं तो उनको भी लेना शुरू करते हैं। आप सब जिन्होंने अभी तक अपना सवाल, अपना पर्सनल जो सवाल है वो नहीं पूछा, तो कुछ भी स्पेसिफिक है जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं या अपने अपनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो फटाफट इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो अपना फोन उठाइए या फिर फोन उठा के आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए अगर आप कॉल नहीं लगाना चाहते। तो आपको क्या करना है, नंबर लिखना है 2342108 पर आपको कॉल करनी है। एक नंबर और है 2342108 जिन पर आप कॉल करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर्स हैं 9868107070, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आज हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव करियर्स इन द डिजिटल एज, मीडिया फिल्म एंड OTT प्लेटफॉर्म, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर रितु संजीव सूद जो कि डीन शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट में। तो आप फटाफट अपने सवाल लिख भेजिए।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हम

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
6: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
5: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
6: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
5: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: Creative careers in the digital age, media, film and OTT platforms. और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम सब के इंटरेस्ट की बात है। हम सब इस मीडिया से तो खास तौर से हर पल जुड़े रहते हैं और ऐसे में इस पर बात करना, इस पर करियर की बात करना तो हम सब के लिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। और अब पता चल भी गया तो प्रॉब्लम यह है कि किस तरह की पढ़ाई करें, कहाँ से पढ़ाई करें। तो अभी हम वही बात कर रहे थे कि कोर्सेज कौन कौन से हैं जो अवेलेबल हैं। प्रोफेसर रितु बता रही थी, प्लीज बताइए।
10: हाँ, अभी तो मैं ये बता रही थी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, क्योंकि पहले तो कोई कोर्सेज होते नहीं थे और आजकल जो है बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है मीडिया में। जैसे कि सबसे पॉपुलर जो कोर्स चल रहा है वो है BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि जो चाइल्ड होता है उसको पूरे मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, चाहे रेडियो हो, फोटोग्राफी हो, डिजिटल मीडिया हो, PR हो, एडवर्टाइजिंग हो। तो हर सेमेस्टर में ऐसे डिवाइड कर करके बच्चे को पढ़ाया जाता है और फिर जो फाइनल सेमेस्टर होता है, फाइनल ईयर होता है, उसमें 3 सालों में बच्चे को ऑलरेडी पता चल जाता है कि उसने करना क्या है आगे, कि क्या वो पब्लिक रिलेशन में जाना चाहता है, क्या वो इवेंट में जाना चाहता है, क्या वो रिपोर्टिंग में जाना चाहता है, क्या वो एंटरटेनमेंट में जाना चाहता है, बच्चे को पता होता है। तो उसके हिसाब से उसको इंटर्नशिप्स दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू द हिज चॉइस ऑफ What he wants. तो उसके बाद इंडस्ट्रीज आती हैं, उनको इंटर्नशिप दी जाती है। इंटर्नशिप्स में और जब इंडस्ट्री इनका इंट्रैक्शन होता है तो उनको फिर पता चलता है कि हाँ, दिस इज वेरी गुड, आई वॉन्ट टू परस्यू। फिर उनको वहां पे अब्सॉर्प्शन हो जाती हैं। सिमिलर

0: जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है थोड़ा सा बीजेएमसी से हट गया है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है मार्केट में और कंटेंट क्रिएटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है।
1: हाँ।
0: तो जो इस वक्त जो सबसे पॉपुलर कोर्स चल रहा है वो है बीएन फिल्म टेलीविजन एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म।
1: ओके,
0: अब जो मैंने बीजेएमसी बताया था दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, बट जो हमारा ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये टोटली अ स्किल बेस्ड प्रोग्राम है और इसमें थ्योरी बहुत ही फर्स्ट सेमेस्टर में सारी थ्योरीज खत्म हो जाती हैं, बाकी स्किल है, बच्चा जो है उसको सारे स्किल सिखाए जाते हैं फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे कि कैमरा है, लाइट्स है, मेकअप है, जैसे कि कैमरा है, लाइट्स है, मेकअप है, एडिटिंग है, उसकी नेटवर्किंग कैसे करनी है, कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, एक्टिंग कैसे करनी है, तो ये सारा इनको जो है 3 साल में कराया जाता है। फिर वही होता है फाइनल सेमेस्टर में बच्चे को इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, दे कैन वर्क इन द इंडस्ट्री एंड आफ्टर दैट दे आर गुड टू गो।
1: अच्छा, ये आपने उसकी बात करी थी, इंटर्नशिप की बात करी थी, तो ये मतलब आपको दिया ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी है या फिर मिलता है या नहीं मिलता?
0: नो,
1: डिपेंड्स।
0: आप मानेंगे नहीं, आज की डेट में इंडस्ट्री में बच्चे कम इंटर्नशिप ज्यादा है।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था कि मीडिया एक टीवी और रेडियो से सीमित नहीं है, मीडिया हर जगह है, चाहे आप रियल एस्टेट में चले जाओ, चाहे आप हॉस्पिटल्स में चले जाओ, चाहे आप जैसे आई एम अ क्रिकेटर और आई एम अ फेमस पर्सनालिटी, आई नीड अ पीआर टीम, तो मीडिया हर जगह है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, हर जगह हो, सो मीडिया हैज चेंज। और आजकल जो है इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि जैसे कि आप बात करेंगे तो डिजिटल न्यूज़पेपर्स आ गए हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर लोग अपना वीलॉग्स बनाते हैं, तो इसमें मीडिया एक ऐसी चीज है कि कोई खाली नहीं बैठता और कमाई बहुत अच्छी है, पर वही है कि हुनर सीखना है,
1: वही हुनर सीखने के लिए लोगों को जरूरत नहीं महसूस होती कई बार।
0: नहीं, वो गलत फहमी है
1: जी। एक सवाल मेरे पास आ गया है।
0: हाँ जी।
1: इसी तरह का जिस पर हम बात कर रहे थे कि हम कई बार कंटेंट क्रिएट तो करते रहते हैं बट प्रॉब्लम आती है कि वो ग्रो नहीं कर पाता चैनल। ऐसा ही एक नॉर्थ ईस्ट नागालैंड बॉर्डर से एक सवाल आया है। इन्होंने लिखा है कि आई क्रिएटेड स्मॉल यूट्यूब चैनल बट आई डोंट नो व्हाई पीपल फॉलो एंड अनफॉलो, सो आई फील सो डिसअपॉइंटेड। How can I grow my channel? I don't have any idea. I just upload the video. Could you suggest me any idea to grow my channel? Sunil ka message aaya hai. Ye Anglong Northeast se aaya hai.
0: Yeah. So, firstly, Sunil, aapne jo hai ye nahi bataya ki kya aap ek professional hai ya fir aapne kahin se media ka course kara hua hai nahi kara hua hai. Kyunki agar aapne media ka course kara hota to ye prashan aaj aap na poochte. तो और अगर क्योंकि देन यू वुड हैव बीन ट्रेन्ड इन द फील्ड एंड यू वुड नो हाउ टू मार्केट योर ओन कंटेंट, क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप जो है प्रोफेशनल नहीं आपने सीखा है। तो मेरा ये मानना है कि आपको किसी कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, वहाँ पे ये प्रॉपर कोर्स करें एंड देन स्टार्ट, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आप जो पहले बनाते थे और जो बाद में कंटेंट बना रहे हैं उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रॉपर वे से सिखाया जाएगा कि कैसे करते हैं। अभी आप बहुत से बच्चे हैं जो कि यूट्यूब से सीखते हैं,
1: यूट्यूब से कई बार हम कहानियां भी ऐसी सीखते हैं ना कि रात में वो हमने कोई चैनल मतलब क्रिएट किया, हमने वीडियो डाला और सुबह देखा कि वो वायरल हो चुकी है और हम इतना कमाई कर रहे हैं, तो इस तरह की वीडियोज बड़ा अट्रैक्ट करती हैं और फिर बच्चे को लगता है कि हम भी कमा सकते हैं, तो वो हो सकता है कुछ लोग कमा भी लेते हैं बट बाई चांस होता है।
0: नहीं, बाई चांस नहीं होता है, ये एक पूरी डिवोटेड टीम होती है, ये पूरा एक डिवोशन है, ये एक फुल टाइम प्रोफेशन है, क्योंकि आपको दिन में 3 रील्स डालनी ही डालनी है।
1: ओके।
0: क्योंकि आपके जो फॉलोअर है वो ही वेट फॉर यू
1: कि
0: आप क्या डाल रहे हो।
1: हाँ।
0: जैसे बहुत सारे जो हैं, जैसे कईयों के हैं जो फिल्म स्टार से मिलते हैं या फिर जो है लाइफस्टाइल का करते हैं तो और छोटे छोटे बनाते हैं, तो उसके लिए लोग वेट करते हैं, या फिर जैसे कुकिंग का होता है, दे आर वेरी फेमस मिशलिन शेफ्स जो बनाते हैं।
1: हाँ।
0: तो लोग उनको देखना प्रेफर करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो यही होता है, तो उसको भी कंटेंट उसका भी कंटेंट जो है कैसे क्रिएट करा जाए, शूटिंग एंगल्स क्या है, लाइट आपकी परफेक्ट है नहीं है, ये सारी चीजों के लिए आपको एक यूनिवर्स

0: या एक प्रोफेशनल प्रोग्राम करना ही पड़ेगा।
1: ओके, तो आपने कहा इसके लिए हमें एक ट्रेनिंग की जरूरत है और वो आपने बताया कि 12th के बाद शुरुआत हो जाती है। और लेकिन ये कोई क्या कुछ गारंटी होती है कि आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे?
0: ये आपके ऊपर है टोटल।
1: ओके,
0: टोटल ये आपके ऊपर। आपने जो प्रश्न पूछा, अभी काफी पेरेंट्स यही पूछते हैं, वो पहली बार आते हैं, वो ये इंटरेस्टेड नहीं होते कि आप पढ़ाएंगे क्या, वो पूछते हैं प्लेसमेंट कितने की होती है। तो उसमें हम पेरेंट्स को यही कहते हैं, देखिए हम तो बच्चे को सब सिखा देंगे, प्लेसमेंट्स भी हम अच्छी दे देंगे, पर ये टोटल बच्चे के ऊपर है।
1: जी बिल्कुल
0: बिल्कुल, टोटल हुनर उसका है, उसका स्किल है, हाउ मच पैशनेट वो है और वो कितना अटेंडेंस कितनी है उसकी, वो क्लासेस अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, मस्ती की पाठशाला नहीं समझ के बैठ गया। तो ये टोटल बच्चों पे है
1: यही। और एक सवाल और शरद
0: एक
1: का
0: मिनट अभी तो मैं आपको एक और बात बताऊंगी
1: कि
0: इसमें जो होता है एवरेज पैकेज जो है, आप इसको 6 लाख से लेके करोड़ों में जा सकते हो।
1: ओके,
0: टोटली आपके ऊपर है। टोटली आपके ऊपर है कि आपने इन 3 सालों में कितना अपने आप को डिवोट करा, क्योंकि आप कोई भी यूनिवर्सिटी जाते हैं वहां पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं।
1: अच्छा,
0: क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, यूर ट्रेनी, तो उस वक्त क्या होता है कि बच्चे जो है वो मस्ती के टाइम में लग जाते हैं। अच्छा, बाहर जब निकलते हैं तो एक गाइडेड और एक वो क्या कहते हैं, एक एनवायरनमेंट से वो निकलते हैं जो कि शील्डेड एनवायरनमेंट होती है। तो वहां जाते हैं तो मीडिया तो बहुत रूथलेस है, बिकॉज एवरीथिंग कॉस्ट मनी है ना, हर सेकंड पे एक पैसा है, हर मिनट पे एक पैसा है। तो वहां पे आके उनको लगता है कि हाँ हमने कॉलेज में सीख लेना चाहिए था।
1: हाँ, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कहीं पीछे महसूस जरूर करेंगे।
0: हाँ,
1: और यही सक्सेस के लिए बाधा भी बन जाती है। शरद गाजियाबाद से लिख रहे हैं, इन्होंने लिखा, हाउ कैन आई परस्यू माय करियर इन एनिमेशन VFX?
0: हाँ शरद, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि एनिमेशन एंड गेमिंग की हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं और बहुत ही क्यूरियस होते हैं, क्योंकि गेमिंग तो 24 घंटे खेल रहे होते हैं और हर प्लेटफॉर्म पे खेल रहे होते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आजकल डिजिटल एज में एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, और OTT प्लेटफॉर्म, फिल्म, टेलीविजन, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, मोबाइल गेमिंग की बढ़ती डिमांड ने इस फील्ड में कैरियर के अनेक नए अवसर पैदा किए हैं। एनिमेशन में स्टूडेंट्स को 2D एनिमेटर, 3D एनिमेटर, कैरेक्टर डिजाइनर, स्टोरी आर्ट बोर्ड आर्टिस्ट, VFX आर्टिस्ट, मोशन ग्राफिक, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। और गेमिंग में आप गेम डिजाइनर हैं, गेम डेवलपर हैं, एनवायरमेंट आर्टिस्ट है, AR/VR डेवलपर, e-sports, कंटेंट क्रिएटर, सब कुछ है। तो और प्लस क्या है कि आर्टिफिशियल और ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के आने से एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री को और भी व्हाट आई कैन से इसके बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये फील्ड हो गई है। और आज जो है हमारी जो सरकार है वो भी AVGC सेक्टर को बहुत प्रमोट कर रही है, दे आर सेइंग के हमारे पास लोग ही नहीं है, वी वांट टू यू नो प्रमोट इट। तो और सबसे खास बात अगर मैं बोलूंगी तो ये भी है कि इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का ये बहुत ही बढ़िया संगम है, एनिमेशन, गेमिंग एंड ऑल।
1: ठीक है मैम, एक चीज और मुझे जानना था कि OTT प्लेटफॉर्म अब आ रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म का जमाना है कह सकते हैं, तो ऐसे में क्या खास तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो पहले नहीं थी अब इस फील्ड में देखने को मिल रही हैं, उस पर हम आपसे राय लेना चाहेंगे।
0: बिल्कुल, पहले क्या होता था, जैसे मैंने पहले बताया है कि जो ये OTT होता था, OTT नहीं होता था सॉरी, और खाली दूरदर्शन और AI और होता था। फिर थोड़ी देर बाद और प्राइवेट चैनल्स आने शुरू हुए, तो प्राइवेट चैनल्स में भी अगर आप देखोगे तो न्यूज़ होती थी, प्लस बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आ गई, सो ब्रेक्स होते थे और सब। अब OTT ने पूरा ही सिनेरियो बदल दिया। उसने क्या करा कि जो पिक्चर आप बाहर देखने चाहते थे उसने आपको आपके ड्राइंग रूम में ले आए, है ना, एंड आप जो है उसको आराम से देख सकते हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म्स ने मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैरियर अपॉर्चुनिटीज को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी हैं। पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए फिल्म स्टूडियो या टेलीविजन चैनल्स पर रिलाय करना पड़ता था कि हम जाएंगे वहां पे, हम सबमिट करेंगे, स्क्रिप्ट मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद कंटेंट की डिमांड बहुत बढ़ गई। इफ यू हैव अ गुड स्टोरी आप जाइए, आपकी स्टोरी के ऊपर बन जाएगा, क्योंकि आजकल जो है कंटेंट

0: बहुत कम है. आजकल आप देखेंगे एक जॉनर ही चल रहा है, वो थ्रिलर चल रहा है या मर्डर मिस्ट्री चल रही है, फिर अब धीरे धीरे कॉमेडी आनी शुरू हो गई है. तो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर्स के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटर्स, वीडियो एडिटर्स, सिनेमेटोग्राफर, साउंड डिजाइनर्स, एनिमेटर्स, VFX आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर्स, ये सब अब इनके साथ ये कैरियर्स और जनरेट हो गए हैं.
1: चलिए इस पर हम बात करेंगे और ज्यादा, लेकिन एक अभी म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और लौट कर आते हैं और जानते हैं कि कितना कंपटीशन है और क्या एज वगैरह भी मैटर करती है क्या, और अगर एज हो गई है ज्यादा, पढ़ाई की एज निकल चुकी है, तो भी क्या मीडिया में कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं आपके भी, अगर आपने अभी तक नहीं पूछा तो फटाफट नंबर घुमाइए 2342-1080 या 2342-1084 या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल पूछ डालिए 9868107070 पर.

आप सुन रहे रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी और मेरे साथ प्रोफेसर रितु संजीव सूद जो कि डीन है शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट शारदा यूनिवर्सिटी में, और फिलहाल आप सबको बता रहे हैं क्रिएटिव करियर्स इन डिजिटल एज मीडिया फिल्म एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, इस टॉपिक पर वो बात कर रही हैं और बहुत सारी बातें ऑलरेडी बता चुकी हैं। और मुझे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो क्वेरी थी वो मैंने पूछ

0: जी, और मुझे समझ में आ गई है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं जानना चाह रही थी कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में भी, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हर दूसरे घर में आज जन्म ले रहा है ये कह सकते हैं, या बनना चाहता है, दिमाग में आ नहीं रहा है कि बनाए किस टॉपिक पर, कुछ कंटेंट क्रिएट करें तो करें किस टॉपिक पर, ऐसे कंफ्यूजन बहुत सारे लोग लेकर घूम रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि पहले वो टॉपिक अपने आप को देखें या फिर अपने आप को ट्रेन करें पहले, उसके बाद फिर वो टॉपिक वगैरह देख कर करें? ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है कोई भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए?
1: देखिए, जो है आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, क्योंकि ये अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे।
0: हाँ
1: देखिए, कंटेंट तो आप पहले सारे प्लेटफॉर्म्स देखिए, देखिए कि विच कंटेंट इज़ रनिंग, कौन सा कंटेंट जो है वो सबसे पॉपुलर है, एंड जो कंटेंट मिसिंग है। क्योंकि क्या होता है कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: मैं फिर कहूँगी कि अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये सब आपको सिखाया जाता है, पर यदि नहीं भी ली तो सबसे पहले आप रिसर्च करिए कि आज की डेट में ऑडियंस का टेस्ट क्या है, आप किसके लिए बना रहे हैं, आपके ऑडियंस कौन है, क्योंकि ऑडियंस के ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। सपोजिंग मैम, आई एम डूइंग समथिंग ऑन लाइक यूथ की आवाज़, सो मेरे को यूथ चाहिए उसमें, आई एल नॉट बी टारगेटिंग पीपल अबव 20 ईयर्स, राइट? तो सिमिलरली, इफ आई एम अगर मैं कुछ बना रही हूँ ब्यूटी के ऊपर, तो ब्यूटी देन अगेन मेरी एज ग्रुप क्या है, मैं किसके लिए कर रही हूँ, कौन सुन देखना चाहेगा, स्किन क्या है, जो भी है, तो हर चीज़ में जो है टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है, और टारगेट ऑडियंस का उनकी सोच, उनका कंटेंट, और उनसे पहले आप बात करिए, देखिए कि क्या कंटेंट चल रहा है, थिंक अबाउट इट, डिस्कस, और उसके बाद फिर आप अपना कंटेंट बनाइए। अगर आप ट्रेन्ड प्रोफेशनल नहीं हैं तो यू हैव अ टीम, यू कैन हायर अ टीम एंड डू इट, तो वो आपको कंटेंट देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि प्लीज़ डू दिस, ये करिए, वो करिए, नहीं तो आप ये अपने आप रिसर्च करिए, बिकॉज आपके पास मोबाइल फ़ोन है। यस, आपके पास अच्छा मोबाइल फ़ोन है, आप के मन में है कि आपको बनना है, बिल्कुल बनिए, पर आप जो है एक, या तो आप कंटेंट लिखिए और टीम हायर करिए, या फिर कैमरा कैसे चलता है, क्या होता है वो सीख लीजिए, कंटेंट कैसे होता है, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट क्या होता है वो ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि फिर आपको अपना कंटेंट स्टैंड आउट करना है,
0: ओके और यही यही मैं
1: और एक
0: पूछना
1: और
0: चाह रही थी,
1: भीड़ में गुम नहीं होना।
0: बिल्कुल यही पूछना चाह रही थी कि कितना कंपटीशन है इस फील्ड में?
1: इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है, मैं ये बोलूँ तो हर एक मिनट एक नया कंटेंट क्रिएटर क्रिएट हो जाता है।
0: बिल्कुल, और बिल्कुल डिफरेंट कई बार आ जाता है
1: बिल्कुल
0: जो हम सोच भी नहीं सकते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आपको भी कुछ ऐसा ही सोचना है जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं
1: बिल्कुल, उसके लिए आपको टारगेट ऑडियंस और रिसर्च करनी बहुत जरूरी
0: हाँ, तभी
1: है।
0: आप वीडियो डालेंगे और रातों रात वायरल हो
1: हाँ,
0: जाएंगे।
1: ये नहीं होता कि आप बैठे हुए सोचो अरे यार मैं ये कर देता हूँ ये चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि आपने रिसर्च नहीं करी है,
0: नहीं किया। अभी एक सवाल सुनील का आ रहा है नॉर्थ ईस्ट नागालैंड से ही, इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोग साउंड यूज़ करते हैं, म्यूज़िक साउंड यूज़ करते हैं वीडियो अपलोड करते समय, और उसका कॉपीराइट आ जाता है, तो हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ कॉपीराइट वंस आई गॉट मोनेटाइजेशन, गूगल मैसेज आई रिसीव फ्रॉम यूट्यूब बट लेटर दे मार्क्ड कॉपीराइट फॉर दिस, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट?
1: क्योंकि ये जो है कॉपीराइट की एक ये बहुत ही स्ट्रिक्ट विजिलेंस है, और आपको जो है या तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और बिना लाइसेंस के आप कुछ भी यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते।
0: ओके
1: हाँ जी,
0: एक सवाल और आ रहा है मुझे, ये अभी मुझे लगता है कि ये सवाल यस मिल गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्रिएटिव फील्ड पर क्या असर पड़ रहा है? पैंथर तोमर लिख रहे हैं और ये मुझे लगता है ये तो जो भी असर है वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, तो कितना असर आया है?
1: हमें एआई से घबराना नहीं चाहिए, हमें एआई से कोई चैलेंज नहीं है मीडिया को,
0: अच्छा
1: क्योंकि एआई को जनरेट करना है, उसको प्रॉम्प्ट देना है। तो अगर मैं सपोजिंग मैं कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करी, उसमें लिखूं कि मेरे को 15 साल का बच्चा है, वो कॉलेज जा रहा है, और अपनी माँ से ये बोलते हैं, एआई आपको वो दे देगा, पर आपको एआई को प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, एआई को आपको शॉट्स बताने पड़ेंगे, एंगल्स बताना पड़ेगा, व्हाट काइंड ऑफ लाइट डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डू यू वांट, उसको पूरी स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी, आपको थीम बतानी पड़ेगी, सब बताना पड़ेगा, क्योंकि एआई ऐसे नहीं डेवलप करता। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एआई का ये भी है कि जैसे मैं

0: बाहर बहुत गई मीडिया चैनल्स में काम करा है, तो बाहर के देशों में मैंने ये देखा है कि वो एआई को सपोर्ट नहीं करते इन मीडिया, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर एआई इज नॉट ऑलवेज राइट,
1: ओके,
0: है ना, एआई को अगर हमने ऑन एयर लाइव कर दिया और उसने कुछ बोल दिया तो लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड.
1: और कई बार आर्टिफिशियल लगता है.
0: हाँ नहीं, आर्टिफिशियल तो दैट्स ओके, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है और आजकल का जो हमारा कंजम्पशन है, दैट्स ओके. मतलब आर्टिफिशियल का इतना नहीं है, बट वो होता है कि आपने उसको प्रॉम्प्ट्स क्या दिए. क्योंकि कई, जैसे अगर आप देखें आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में काफी सीरीज आ गई हैं और वो बहुत बढ़िया बनी हुई हैं. सो पीपल हु आर मेकिंग इट, अगेन मैं ये बोलूंगी कि प्रोफेशनली ट्रेंड है. तो सिमिलरली आपने, आपके पास एआई की वो है, आपने प्रॉम्प्ट दे दिया, उसने बना दिया, बट उस प्रॉम्प्ट के पीछे आपको इंजीनियरिंग चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए कि मेरे को उसको क्या प्रॉम्प्ट देना है. एंड मेरे को नहीं लगता कि एआई is going to be a threat to media. No, AI is a support.
1: सपोर्ट, हेल्प करता है. आप जैसे लेकिन कई बार ये भी सुनने को आता है कि कंटेंट राइटिंग के फील्ड में काफ़ी कुछ एआई ने कैप्चर कर लिया है, ट्रांसलेशन का फील्ड काफ़ी कुछ.
0: हाँ, मैं एक बार एक आपको एक और बात बताती हूँ कि जैसे ट्रांसलेशन का करा है, बट देन उसको मैं पूरा रिलाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरा है ना, मेरी पर्सनल ट्रांसलेशन है, मेरा एक वे ऑफ राइटिंग है, मेरा एक स्टाइल है. एआई प्रॉम्प्ट विल कैनॉट कॉपी माई स्टाइल, राइट? इट कैनॉट कॉपी माई स्टाइल. एआई कैन मेक पकीज़ा, बट इट कैनॉट कॉपी द स्टाइल ऑफ द डायरेक्टर. तो यही है. तो एआई जो है उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना बहुत जरूरी है.
1: ओके,
0: टू मेक इट दिस थिंग. और एआई इज गुड, इट्स हेल्पफुल, व्हाई नॉट.
1: तो अगर कोई चीज हेल्प कर रही है, आपका काम आसानी से कर दे रही है, टाइम से कर दे रही है और शॉर्ट टाइम में कर दे रही है,
0: और प्लस एथिकल, एआई को एथिकल यूज करिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करिए.
1: तो मेरे पास टाइम तो बहुत कम है मैम, बहुत ज्यादा नहीं है. तो ऐसे में चलते चलते आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो क्रिएटिव मीडिया में आना चाहते हैं, डिजिटल एज में मीडिया है, फिल्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में है, जो अट्रैक्ट होकर आना चाहते हैं और ट्रेनिंग नहीं है, या ट्रेनिंग है भी तो भी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किन चीज़ों के लिए उनको तैयार रहना चाहिए ताकि वो इस फील्ड में आए तो कहीं मात ना खाएं, या मात खाएं भी तो किस तरह से अपने आप को उठाकर आगे बढ़ें.
0: बिल्कुल, मैं इस वक्त जो श्रोता सुन रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी मेरे को लगता है सुन रहे होंगे, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एक स्किल बेस्ड जो है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम है. तो जब भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी चुने या कुछ भी देखें, तो एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर देखिए, सॉफ्टवेयर क्या यूज करें वो देखिए, और जो आपके टीचर होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आर दे जस्ट थ्योरी और या फिर वो इंडस्ट्री कनेक्ट से हैं, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री कनेक्ट होना बहुत जरूरी है.
1: अच्छा,
0: आप खाली मतलब पढ़ पढ़ पढ़ के आप मीडिया नहीं पढ़ा सकते हैं. तो आप टीचर्स की प्रोफाइल जरूर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर देखिए, एंड देन यू चूज के आपके, बिकॉज 3 साल के बाद बच्चे का जो कैरियर है वो उस यूनिवर्सिटी से ही बनेगा.
1: ओके,
0: तो आपको यूनिवर्सिटी ध्यान से और सोच समझ कर चुननी चाहिए. और इस कैरियर में आप कभी भी रिटायर नहीं होते हैं. मैं आपको ये बताऊँ,
1: ये अच्छी बात है.
0: हाँ, इसमें आप कभी रिटायर नहीं होंगे, आप चाहे 70 के हो, 80 के हो, ये एक पैशन है. एंड बट पैशन को आप प्रोफेशनली करिए, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा.
1: और आप बचपन से शुरू करके गेमिंग जो है बुढ़ापे तक कर सकते हैं.
0: गेमिंग ऑफकोर्स,
1: मैंने गेमिंग की बात किस लिए की ये भी मैं बता देती हूँ. टाइम बहुत कम था, मैं चाह रही थी ये सवाल अवॉइड करूँ, लेकिन आ गया तो मैं चाहूंगी कि इस पर थोड़ी सी बात आप जरूर करिए. राहुल दिल्ली से लिख रहे हैं कि आई वॉन्ट टू आस्क वॉट आर द करियर ऑप्शन इन गेमिंग इंडस्ट्री एंड वॉट इज द फ्यूचर ऑफ दिस फील्ड इन इंडिया.
0: इट्स अमेजिंग फील्ड, क्योंकि आजकल जो है गेमिंग इंडस्ट्री को तो हमारे जो है सरकार भी प्रमोट कर रही है, और हमारे पास ये जो स्किल है ये बहुत कम है. इट्स अ वेरी अपकमिंग स्किल एंड बहुत इंकरेजमेंट है. आप प्लीज इसमें एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग करिए, क्योंकि आपके पास जो है सॉफ्टवेयर है उसको कैसे क्या करना है. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप गेम डिजाइनर बन सकते हैं. लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैव कम इन टू द मार्केट जो कि आप यूज करेंगे, आपकी टीचर्स आपको बताएंगी. तो इट्स गोइंग टू बी, इट्स अ वेरी गुड कैरियर. प्लीज गो अहेड, डोंट थिंक ट्वाइस, दोबारा सोचिए मत.
1: बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लिसनर्स को काफी हेल्प मिली होगी इस फील्ड से रिलेटेड, काफी जानकारियां आपने दी. थैंक यू सो मच प्रोफेसर रितु, आप स्टूडियो में आई और इतनी काम की बातें बताई हमें.
0: प्रिविलेज सारा मेरा था मैम.
1: थैंक यू सो मच. तो ये थी प्रोफेसर ऋतु संजीव सूद, जो कि डीन शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म

0: एंड एंटरटेनमेंट, शारदा यूनिवर्सिटी में थी और फिलहाल में है। और फिलहाल हमने बात की क्रिएटिव करियर्स इन द डिजिटल एज, मीडिया, फिल्म एंड OTT प्लेटफॉर्म्स। इस टॉपिक पर आपके साथ मैं थी बबीता त्रिपाठी। और अब आशा ने लेकर कौन आए हैं आप, उनका स्वागत करिए अगले शो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और रितु जी की पसंद का ही एक गाना सुनते हुए विदा लेती हूँ। बाय।
1: उठे सबके कदम, देखो रंग।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का आकाशवाणी रेनबो पर, जो पहुंचता है दिल से दिल तक, और दिल से दिल तक के सफर पर आपके साथ मैं हूं सत्य, प्रोग्राम आशियाना लेकर। और आज का आशियाना, आज का कार्यक्रम समर्पित होता है महिलाओं को। जी हां, उनके लिए है, महिलाओं के लिए है, उनकी जिंदगी से जुड़ा है, उनके लिए विशेष है। और आज मैं बात करने वाला हूं फुर्सत की। जी हां, फुर्सत के उन पलों की जो हम जिंदगी में कितने बिता पाते हैं हम खुद नहीं जानते। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बार फिर से स्वागत के साथ ये वेलकम सॉन्ग।

कहते हैं कि फुर्सत सिर्फ खाली वक्त नहीं है, फुर्सत वो पल होता है जब इंसान खुद से मिलता है। लेकिन आज मैं बात करूंगा उनकी जिन्हें अक्सर सबसे कम फुर्सत मिलती है। सुबह की पहली किरण के साथ उनकी दौड़ शुरू होती है, किसी के लिए मां, किसी के लिए बेटी, किसी के लिए पत्नी तो किसी के लिए बहू। हर रिश्ते को निभाते निभाते कई बार अपने हिस्से की फुर्सत वो कहीं पीछे छोड़ देती है।

जी हां, तो हर रिश्ते को निभाते निभाते कई बार अपने हिस्से की फुर्सत को कहीं पीछे छोड़ देती हैं। कई बार एक अधूरे सपने सी लगने वाली फुर्सत उनके लिए कोई विलासिता की चीज नहीं है, बल्कि एक जरूरत बन जाती है। हर शख्स को होती है जरूरत फुर्सत के इन पलों की। कुछ पल किताबों के साथ, कुछ पल फुर्सत वाली चाय की प्याली के साथ, कुछ पल खामोशी के सिर्फ अपने साथ। इसलिए थोड़ी फुर्सत अपने लिए जरूर रखिए। आप सुन रहे हैं, आप आशियाना, सत्य आपके साथ है, आकाशवाणी रेनबो पर।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो पर इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना और हम बात कर रहे हैं कि फुर्सत के उन पलों की जो आपको जाने कभी मिलते हैं। खैर, कभी आपने सोचा कि आखिर कहां जाता है महिलाओं का ये समय? एक ताजा सर्वे के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से लगभग 5 घंटे खाना पकाने साफ सफाई में भी जाता है, परिवार की देखभाल में जाते हैं 2.5 घंटे के लगभग, ट्रैवल जो करती हैं, आने जाने का जो वक्त है, चाहे वो नौकरी पर हों या किसी और काम से, उसमें भी लगभग 70 मिनट खर्च होते हैं, ये अनुमानित। और घरेलू कामों से बंधी महिलाएं, नौकरी करती महिलाएं, वीकेंड पर घरेलू कामों को निपटाती महिलाएं, तो अगर इनकी सेवाओं और श्रम को बाजार के हिसाब से अगर आप आंके तो इसका मूल्य बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। हर दिन कितना अवैतनिक काम, जिसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती इन्हें, वो करती हैं। तो भाई फिर से यही कहूंगा, थोड़ा सा वक्त अपने लिए जरूर निकालिए, फुर्सत के पल हमारी जरूरत है।

0: आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटता है सत्य।
1: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
2: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
1: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
2: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
1: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: ताजी ताजी, महकी महकी, जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
6: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
7: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
6: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
7: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
8: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
9: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
10: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
9: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
10: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
9: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat. Powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह

0: 12 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो आप इस वक्त सुन रहे हैं। आकाशवाणी रेनबो पर हम बात कर रहे हैं फुर्सत के पलों की, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप खुश हैं तो परिवार भी खुश है, समाज भी खुशहाल होगा। हर चीज को बाद में कहकर टालने की आदत छोड़िए और अपनी प्राथमिकताओं में, अपनी प्रायोरिटीज में खुद को भी शामिल कीजिए।
3: चुनमुन चुनमुन

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओ, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेशधाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओ, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम

0: भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओ, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थी। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओ, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, मां की गोद में और नदियों की घाटियों में। हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू? हाँ,
2: क्या करूँगी? गमकुआ इधर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ, चल घर चल। अरे चल, सब खोल रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।
2: नहीं,

0: उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन

0: मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
1: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
0: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
1: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा कर

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसंती, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सब को बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या
2: है?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा?
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो चलो चलो
4: चलो।
3: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, हीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था,

उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Amrituraj, actor Mamuti aro playback singer Alka Yakne khan logodi award kori dise award is majuri thagalen laga guru Sangyu Sang S Ponganar milagena Padma Shri do arti talaga innovative kam aro Au Naga folk tradition do choita digates upor jetam kori rakhya karne dise Pratan Mandri Narendra Modi Brako second nation first laga principal bra India the Jolti Aki Par Haikena credible Aro Vishwastakya global power di but love Korea se. Ikta private media house bra Nightility Summit Rakyadi Kotakri Tabrakosike Jaija Digeti Desh Laka Kamiap Kano Vishwas Takat Arudunya Laga Bahlai Karni commitment di Rakitaki se.
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है सबसे बड़ा सिद्धांत है
0: सरकार बा ऑफिस ती 12 साल था के इलाका जनाई देगेना ब्रतन मंत्री बकोसे इनिशिएटिव कन स्वच्छ भारत मेक इन इंडिया खाती बढ़ाई दिया और लोकल प्रोडक्ट्स करने मदद दिया दो देश बनाई दिया लगा आत्मा दे मानुकन बस साथ दिया करने कामयाब हो इसे कैसे Tenimi Union Nagaland TUN bra sabse pehla annual general session to agok batse merimadi aji progressive society through unity laka theme nichidi rakise manu jama thagya khal nagodi kotha kore KG Kene bra naga identity majodi tenimi laka milmilap jotam kore rakibali dorkar janaise tarpor ko sikhi tenimi di angami chagisang ringma zileyang aro puchori tribes milagina thakia de ekki ancestry history aro custom sakiasi jonba community to generations karni takat bra jari rakhiase
2: let us continue to play the role of the guardianship give good leadership to our people naga people as a whole and stand our ground as we always did we will not succumb to pressure we will not succumb to threats let good sense and logic and the fear of god continue to inspire us and lead our people to a better life
0: Shri Kenebra, Samaj Alakalak Bhakuri Thakya Aro Bhavana Namiliapur, Apsos Janaikisi Aro Naga Manukanlaka Bhalai Karone, Zimitar Thakya Leadership Aro Milaikina Kamkuri Vili Koise, Apsari Kutakuri Minister for Women Resource Development Aro Horticulture, Salotonio Krosibra, Tenimi Community Lokodi Nijo Heritage, Culture Values Aro Sati Bhaijuri Laka Atma Jatam Kuri Rakibili Anarad Kurise, Tarma Milmilap Ik Dusra Lokodi Saman Kuria Aro Cooperation समाज आगे जाबो करने सब्सिडियर करासी आरो नवजवान जेनरेशन लोगों की इडियो वैल्यूज कांडो बहाल नियम मोरम आरो समाज लोगों की सेवा कुरिया ब्रा जारी रखी बोले कैसे द्वितीय मिनिस्टर्स ब्रा भी कम्युनिटी जोरी मजबूत करेगी ना दूसरा नागा ग्रुप्स लोगों की मिलाएगी ना स्टेटी शांति आरो उन्नति बढ़ाई दी बोले जाना इसे नागालैंड चीफ मिनिस्टर निपियो ब्रा Nipurio, Tailokode, Deputy Chief Minister T.R. Zeliang, Aru Yentong Patton, Advisor Dr. K. Kriloli Yomi, Aru Dusra Officials Ra, Nagaland House, Nai Deliti Jagale, Joy Ghat Nahuadi, Sai Jese, Timbra, Noxan Khan, Assess Kuri, Jan Karitu, Joint Resident Commissioner, Sharon Longchari Bra Dise, Deputy CM Yentong Patton Bra, Jan Karitu, Social Media Di Bhakuri Se, Darba Fire, Aru Emergency Services Bra, Jolti Pungchikena, Joy नपाई दिया करने मन खुशी जनाए से श्री पतन ब्रा कैसे कि इम्पैक्ट सबली करने दूसरा डॉक्टर गादम खान उठाई दिया से आकाशवाणी कोहिमार ब्रा अपनी खान लोगों दे खबर आनी दिया से ताजा खबर होनी वो करने अमी खान लगा एक सैंडल्स एआईआर न्यूज़ सेलर चारो एआईआर अंडरस्कोर कोहिमारी फॉलो करें भी अपनी खान ब्रा इधो खबर दो न्यूज़ ऑन ईयर ऐप और यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज़ कोहिमार ब्रा होनी बोली पावो Welcome back, Apni Khan Samlaga Khobor Niyase. UNO Minister of Cooperation Amit Chabra, Prokyamanti, Majud Manulaka Kam Hataigena Kisan Khan Bhaklua Takat Kuridibale Koise, Darba Niflex.in, Jondo National Agricultural Cooperation Marketing Federation of India Limited,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेकिया के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
4: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
4: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
4: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
5: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और R. माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cyber security to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the centre of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations for Kharif season to help farmers deal with the possible impact of a weak monsoon caused by El Nino. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan said that the country had so far seen around 43% less rainfall and that the monsoon was expected to remain weak in July too.
7: Overall rainfall has been 43% below normal so far, and according to the weather forecast, conditions are likely to remain weak until the week ending 2nd July. This means that our kharif crops could be affected. We have been preparing for such situations for quite some time. An assessment has also been carried out to determine how many districts may be affected. Based on the current projections, around 315 districts are likely to experience deficient rainfall.
6: Mr. Chauhan said that states have been advised to promote crops like pulses, coarse grains and oilseeds, which require less water and can still perform well under difficult conditions. He said scientific protocols, timely crop planning and district-level preparedness were being strengthened in coordination with the states. Mr. Chauhan added that Krishi Vigyan Kendra, AgroMet units and other advisory channels are being used to ensure that farmers receive timely guidance. The International Centre for Ocean Information Services, or INCOIS, has begun issuing specialised bulletins on the potential impacts of the ongoing El Nino event on maritime sectors. The first bulletin was released by Shivela Member of Parliament, Konda Vishweshwar Reddy, at an event in Hyderabad. The bulletin states that the El Nino event is steadily developing and is expected to peak during winters between November 2026 and January 2027. Sea surface temperatures in the Indian Ocean are projected to remain above normal till May 2027. President Draupadi Murmu presented the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik are among the decorated recipients. A report.
8: This year, the government had announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Padma Bhushan was given to 7 persons, including former tennis player Vijay Amrit Raj, actor Mammootty and playback singer Alka Yagnik in today's ceremony. Politician Shibu Soren was awarded the Padma Bhushan posthumously. 57 persons received the Padma Shri Award, including cricketer Rohit Sharma, actor R. Madhavan and former Prasar Bharati CEO Shashi Shekhar Vempati. Actor Satish Shah was given the Padma Shri posthumously. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah were among those who were present on the occasion. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
6: The National Testing Agency or NTA today announced the results of Common University Entrance Test CUET 2026 for undergraduate admissions. Candidates who appeared for the examination can now access their scorecards through the official CUET portal. According to NTA, over 11 lakh candidates appeared for the examination this year. A three-member special investigation team or SIT probing the alleged anomalies in donations and offerings at the Ayodhya Ram Mandir has submitted its initial probe report today. The report was submitted to Additional Chief Secretary Home Sanjay Prasad by SIT head Vijay Vishwas Pant, who is Commissioner of Lucknow. The high-level panel was constituted by the state government to investigate alleged financial irregularities and misappropriation of funds. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back, you're listening to News at 9. The Ministry of External Affairs today confirmed the death of 12 Indian citizens in an explosion in Qatar. Addressing media in New Delhi this afternoon, Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said a total of 66 people were injured in the incident and are currently receiving medical treatment.
9: We lost 12 of our nationals in the tragedy in Ras Laffan gas field where an explosion happened. Several other people have also been injured. I am told that some 66 people are injured across nationalities. We don't know exactly how many of them are Indian nationals, but all those people who are injured are safe. We are talking to the local authorities for the identification of the mortal remains, as also for the transportation of mortal remains to India. We are also in touch with the family members of those who have died in this very unfortunate accident.
6: Responding to the comments made by Pakistani Defence Minister Khwaja Asif on the situation in Pakistan-occupied Kashmir, the spokesperson said such remarks are desperate attempts by the neighbouring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
9: Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these fabricated claims with the contempt that they deserve. The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
6: Mr. Jaiswal said that since the signing of MOU between the US and Iran on the 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. He hoped that the remaining India-flagged vessels would also be able to cross the strait soon. The Tamil Nadu government has set up a helpline to assist people affected by the fire tragedy in Qatar. Chief Minister C. Joseph Vijay today announced an ex gratia of 10 lakh rupees each to the families of those who lost their lives in the incident. He said, the state government is taking steps to bring back the mortal remains of the three victims in coordination with the Ministry of External Affairs and the Indian Embassy in Qatar. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali and the Prosperity Party on their decisive victory in the Ethiopian parliamentary elections. In a social media post, Mr. Modi said, India greatly cherishes its historic, multifaceted and deep-rooted ties with Ethiopia. Mr. Modi also reaffirmed his commitment to deepening the bonds of friendship between the people of India and Ethiopia. The Supreme Court today stayed the Delhi High Court order directing premature release of a lifetime convict in the 1993 Kolkata Bow Bazaar blast case. A bench comprising Justices P.K. Mishra and Sanjeev Sachdeva gave the interim relief on a plea filed by the West Bengal government, challenging the 5th of June order of the High Court directing forthwith release of the 77-year-old convict Mohammad Rashid Khan. In Gujarat, Aam Aadmi Party MLA Chaitar Vasava may lose his assembly membership following his conviction in an assault and extortion case. Gujarat Legislative Assembly Deputy Speaker Purnesh Modi said that a person sentenced to 2 years of imprisonment cannot legally continue in office and is also barred from contesting elections for 6 years. Chaitar Vasava, his wife Shakuntala Vasava and 8 others were recently convicted by the Rajpipla Sessions Court in connection with a 2023 case involving the assault of Forest Department officials, extortion and offences under the Arms Act. The India Meteorological Department or IMD has issued an orange alert for thunder squall activity with wind speeds likely to reach 60 to 70 kilometers per hour over Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Delhi NCR today witnessed a sudden spell of intense weather as heavy rainfall, dust storms and strong winds swept across the region. Heavy rainfall conditions are likely over Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Madhya Maharashtra, Odisha, Telangana, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the next 2 to 3 days. Meanwhile, IMD said heat wave conditions are likely to persist over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha during the next 2 to 3 days. In hockey, India defeated Pakistan 4-3 in the thrilling FIH Men's Pro League 2025-26 clash in London a short while ago. Pakistan took a shock lead against the run of play in the first quarter as Ahmed Nadeem scored after a penalty corner. After squandering a number of penalty corners, India finally equalised in the second quarter, courtesy Abhishek Nain's goal. Neelkanth Sharma scored soon after to give India the lead. Sukhjeet Singh added India's third goal with a superb strike. Rajinder Singh sealed the win with a brilliant drag flick from a penalty corner in the fourth quarter. Shakil Moeen and Abu Mahmood scored the other two goals for Pakistan. In the FIFA World Cup, Portugal will face Uzbekistan in a Group K fixture at Houston in US, with Cristiano Ronaldo's side aiming to bounce back after being held to a draw in their opening match. The match will begin at 10:30 p.m. Indian time. In Group L, England will take on Ghana in a highly anticipated clash in Boston at 1:30 a.m. India finished another successful day at the ISSF Junior World Championship, with the country's shooters adding 3 more medals including 2 silver and 1 bronze to their tally in Zoll, Germany. Shiva Narwal won the silver in the men's 10-meter air pistol junior event with an impressive performance, while Yu Pratap Singh Rathore claimed the bronze in the same event, ensuring a double podium finish for India. India also secured a silver in the men's 10-meter air pistol junior team event. With these 3 medals, India's overall tally has risen to 15, comprising 5 gold, 3 silver and 7 bronze. India and the US opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in US tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met US Trade Representative Jamieson Greer and US Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Benchmark domestic equity indices declined sharply by 1.2% today, mirroring losses across global markets. We have a report.
10: Sensex plunged by 893 points to close at 76,201, while Nifty shed 279 points to settle at 23,824. In the foreign exchange market, the rupee depreciated by 6 paise to close at 94 rupees and 74 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1.1% down at 1,46,870 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% lower at 2,28,370 rupees per kilogram a short while ago. With Intikab's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
6: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijayamrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and Singh Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.

0: Sop Swakar Health Center te BP laga free check up treatment aro kau phal thakibo laga motop di ase BP laga kunba sawal thakile toll free number 1-800-116-666 call koribi
1: BP haribo desh jitibo
2: kitu jankari NTEP bar di ase
3: हेलो
4: राजेश जी मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो दूसरे कमरे में जाइए अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं लंबे जाएंगे
5: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे
3: सर इतने कहाँ से
5: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए बाकी बाद में
3: सर, 2 लाख
6: क्या हुआ पापा
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं
4: अरे
3: काट दिया
6: पैनिक मत कीजिए पापा डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है ये सब फ्रॉड है
3: फ्रॉड
6: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए
9: Hello, good evening, my dear friends, my lovely and awesome listeners. Apni kan sokke program ni swagat kuri ase. Agajwani Kohima FM Chagban 103 megahertz te. Apni khalaga host aur dost Arjitam jan lagade. And my dear friends, tonight I'm delighted to be your companion for the next about 24 minutes. To aji laga special presentation thaki ase. We celebrate the magic of togetherness in music with a collection of memorable Bollywood duets and choruses songs. So my dear friends, opening a soppy huni thakibe, sit back, relax and enjoy this melodious journey of romance, friendship, celebration and togetherness through some evergreen Bollywood favorites. Poila geeta ni diye se, ek duje ke liye 1981 saal laga film thakiye se, Lata Mangeshkar aro S.B. Balasubramaniam laga awaste. Lata Mangeshkar hi itupra ekta National Film Award pa laga ekta geet thakiye se, aro S.B. Balasubramaniam laga debut. Hindi film songs kriya lagare instant sensation pura desh te balaga ekta geet thakiye se hone ki na enjoy kribi

मिखल नगर लिस्नर दुर्गेश नकन विवक वैसे जीवन एक संघर्ष है। अच्छे काम करते रहो, गॉड आपके मदद करेगा। सुब्रत्री को किना लिखना पताई दिए से सुब्रत्री दुर्गेश जी एंड थैंक यू सो मच आपने कल सब के बिशु कुशी बचनाई दिए से विद द जॉयस म्यूजिकल सेलिब्रेशन वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स ड्यूएट्स एंड कोरसेस स्पेशल हमें उम्मीद करिए से दिस सॉन्ग्स फील योर इवनिंग विद वार्म्थ नॉस्टैल्जिया एंड हैप्पीनेस। My dear friends, music becomes even more beautiful when voices come together. Just like life becomes more meaningful when people come together in harmony and friendship. Thank you so much for being in the show. Apni gan sobke bishi khushi bachanai diye se. Idiya 10 baje holokot. Aaj amar rat lega transmission me manad bon kori diye se. Apni gan ahakali pujo 6 baje de FM transmission kuli diabo. Good night. Take care.